क्यों आ गए, कल्बे हैरा की तस्की वहीं रह गई। इज ऑल माई अदर तमन्ना हैज गॉट फुलफिल, द ओनली तमन्ना दैट डिजायर वॉज दैट आई शुड हैव रिमेन फॉर एवर एंड एवर इन मदीना शरीफ, दैट इज वन डिजायर विच रिमेन्स। मे अल्लाह तबारक व तआला ब्लेस ऑल दोज हैव रिटर्न फ्रॉम हज विद हज मकबूल मबरूर, एक्सेप्ट देयर दुआज, एंड अल्लाह ब्लेस अस ऑल विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग मक्कतुल मुकर्रमा एंड मदीना तैयबा। Now we'll have a little bit of zikrullah. Allah, Allah, kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai. Allah, Allah, kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai.

थोड़ी लज्जत है, मगर उस पालने वाले से ये कैसी बगावत है, मगर उस पालने वाले से ये कैसी बगावत है।

दिल की सब धड़कनों में बसा तेरा नाम, अलैका सलातु अलैका सलाम, अलैका सलातु अलैका सलाम, अलैका सलातु अलैका सलाम, अलैका सलातु अलैका सलाम, अलैका सलातु अलैका सलाम। इश्क में तेरे जो भी हुआ मुबतला, तुझ पे फिर जानो दिल से हुआ वो फिदा, दिल की

तो फरहत का मैं क्या कहूं, तेरे दर पे जो आके मिला है सुकून, उसकी लज्जत तो फरहत का

वही गोर हो कफन होता। इफ इट इज नॉट डेस्टीन देवर एवर इट मे बी लेट इट बी इन अ स्टेज दैट यू आर प्लीज्ड विद अस ब्लेस अस बरकत इन अवर होम्स लाइफ टाइम बिजनेस एक्सेप्ट ऑल द वर्क्स ऑफ दीन दैट आर टेकिंग प्लेस। तबलीग व दावत की मेहनत कबूल फरमा, गश्त तालीम इज्तिमात को कबूल फरमा, मसाजिद मदारिस खानकाओं को कबूल फरमा, तमाम दीनी अंजुमनों को कबूल फरमा। ब्लेस ऑल वर्कर्स ऑफ दीन विद इखलास, ब्लेस अस विद ऑल द गुडनेस दैट नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेग्ड फॉर अस, ब्लेस द उम्मत विद दैट गुडनेस एंड फ्रॉम ऑल द मिस्चीफ करप्शन एंड फितनास दैट ही आस्क्ड फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट अस एंड द उम्मत ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतस